हर की पूजा दुर्लभ है संतो, हे संत जनो हरी दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पावे जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा है कई चीज लभिया लभ जांदी है पर कहंदे ने दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर देखन

हर साचे भावे सौ पूजा होवे। बस उस मालक नू पा जाए फिर तेरी पूजा परवान है। पर किस तरह हर

तेरी पूजा प्रवान ता हो सकती है जे तू मालक दा पाना अपने मन च वसा लै, मालक दा हुक्म अपने अंदर वसा लै। जदों मालक दा हुक्म तेरे अंदर वस गया तेरी पूजा प्रवान हो जाएगी। अगे सतगुरु उपदेश कहंदे ने, पूजा करे सब लोक संतो, पूजा करे सब लोक संतो, सारे लोग पूजा करते हैं क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि मैं पूजा करा, पर यह गल वखरी है पूजा प्रवान किसी की चढ़ती है, हर कोई नहीं चढ़ा लेंदा क्योंकि पूजा करन दी एक मर्यादा है, एक नियम है, एक लॉ, एक कानून है। जब तक तू उस ला कानून दे विच नहीं आउंदा ओ पूजा प्रवान नहीं हुंदी। हुण साहिब कहिंदे ने, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। मन मुख दी पूजा कदे थाए नहीं पैंदी, क्यों? मन मुख कहिंदे ने जिदा मुख गुरु वल ने, पूजा ते कर रहा दिखावा कर रहा है, लोगों नूं समझ आ रही कि पूजा विच बैठा है, लेकिन वह कहिंदा नहीं मैनू लोग देखण के मैं पूजा कर रहा हां। कई लोग पगतावा ज्यादा करते ने। इसे तरह भाई सेवा सिमरन की गल है, जिन्हें सेवा करनी है प्रगटावा ना करे, सेवा लगा रहे, सेवा लगा रहे। जो तो सेवा च लगे आपे मालक प्रवान कर लेगा। इसे तरह प्रभु की पूजा है, तो पूजा विच लगा रहो, अपना आप प्रगट ना कर, क्योंकि सिमरन कर्म वाला तो आपे प्रगट हो जाता है, उथे कहन की लोड़ नहीं रह जाती।

कहते हैं अगर तू मेरा प्यारा है जब तेरे नाल मेरा प्यार है तो उस प्यार दे विच कोई कमी रह गई उस प्यार दे नाल तो मेरिया तमाम भुखा कहते हैं वह पूरी हो गई हैं। तू मेरो प्यारो इतना लफ्जी कहना यह सिद्ध करता है कि कोई हस्ती कोई शख्सियत कोई बींग मौजूद है जिस दे नाल महाराज जी का

तू मेरे प्यार हो तो कैसी भूखा है, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरियां दूर होंदियां। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए, ए मेरे प्रीतम। प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक्सप्रेशन है, ए मेरे प्रीतम तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान है। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आखते हैं अमृत प्रिया का नाम, प्रिया प्यारा कहते हैं मेरे प्यारे का जो नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। साध संगत जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हाँ जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार। ध्यान नाल सुन, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च नाम प्यार। कहते हैं

गुरु महाराज जी के पास वो नाम वाला है, उस नाम वाले के नाल महाराज जी का प्यार है, उस दे नाल मोहब्बत है। इस करके गुरु महाराज जी नू उस दा नाम प्यारा लगता है। सो इथों दो नुक्ते सिद्ध हुंदे हन। नंबर एक कि गुरु महाराज जी दा अगर उस नाम वाले दे नाल प्यार है ते गुरु महाराज जी ही सानू उस नाम वाले तक ले जा सकते हैं। गुरु महाराज जी ही उस नाम वाले नाल साडा प्यार पवा सकते हैं, क्योंकि प्यार किसे ना किसे एक्सपीरियंस के बेस उते हुंदा है। उस नाम वाले दे नाल सानू मिलाणगे, उस नाल मिलन दे नाल जो सानू एक्सपीरियंस होएगा वो इतना वंडरफुल होएगा, इतना मैजिकल होएगा, इतना मिरेकुलस होएगा कि इंस्टेंटली वी विल फॉल इन लव विद दैट। पर जब तक असी उसमें मिलांगे ही नहीं, उस नाल प्यार किवें हो सकेगा? तो प्यार पाउण दे वास्ते कोई विचोला चाहिदा है जिहड़ा उसनूं जाणदा होवे, उस तक पहुंच रखदा होवे अते दूसरां नूं उस तक लजा सकदा होवे। उही प्यार पवा सकदा है ना। हुण असीं महाराज जी तों आ गुरबाणी चों पुछीए, सच्चे पातशाह साडी समस्या यह है कि साडे पास प्यार नहीं है। आप जी का तो प्यार है पर साडे पास प्यार नहीं है, तो फिर साडा प्यार किस तरह करे? हुण सवाल मेन इशू यह है, महाराज जी आप जी दे घर रब ही रब है और उसका नाम ही नाम है। आप जी नू वो भी प्यारा है, उसका नाम भी प्यारा है, पर साडे ते तरस करो ना, तो असी उसनू जानते हैं ना, साडा उसके नाल प्यार है। क्योंकि जे प्यार होवे तो फिर यह किस तरह हो सकता है कि साडा उसका नाम जपन च मन ना लगे? यह किवें हो सकता है? जे प्यार होवे तो नाल मन ना लगे? जदों प्यार हो जाता है उदों टाइम एंड स्पेस दोनों भुल जाते हैं। सानू नाम जपन लग्यां नू कदे लत थक जाएगी, कदे कमर दुखेगी, कदे कुछ होएगा, कदे इचिंग होएगी, और असी टाइम देखते रहांगे। एक घंटा सानू नाम जपन लिए आख्या जाए तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। 3 घंटे की असी पिक्चर आराम नाल देख सकते हैं। सो साडा प्यार नहीं, लेट अस एडमिट दिस। गुरु महाराज जी का प्यार है उस नाम वाले दे नाल, ते जिस दे नाल प्यार होवे उसका नाम भी प्यारा लगता है और उस दी सारियां चीजा प्यारियां लगदियां। मेरा नाम ही नहीं, जिस दे नाल प्यार होवे उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है। इस करके महाराज जी ने आख्या है, तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण केते। उस दे नाल प्यार है करके कहंदे हन तेरे अनेका तेरे च गुण हन, क्योंकि जिदे नाल प्यार होवे उच ही गुण नजर आया करते हैं। जिदे नाल प्यार ना होवे उच भावे गुण भी होण तां भी अवगुण दिसिया करते हैं। महाराज कहंदे हन तेरे अत्यंत गुण हन, अते उस दी हर चीज तो महाराज कहंदे बलिहारी कुदरत वसिया, कहंदे तेरी कुदरत तो भी मैं बलिहार हां, तेरी कुदरत तो मैं बलिहार हां। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि फाउंडेशन जो है वो प्यार दी है। महाराज जी दा उस नामी दे नाल प्यार है, उस दे नाम नाल प्यार है, उस दी रचना दे नाल प्यार है। इत्थों तक के असी तां अपने आप ते कई दफा तरस करदे हां कि सानू लाइफ क्यों मिल गई है, वट टू डू विद इट वी डोंट नो। समटाइम वी इवन गो टू द एक्सट्रीम ऑफ टेकिंग अवर ओन लाइफ। पर महाराज जी आखदे हन वाह फसम तू वाह जिन रच रचना हम की है। उस दे नाल प्यार होण करके महाराज जी अडोर करदे हन कि तू कमाल है, किस तरह का तू सानू बनाया है। कहंदे हन वाह फसम तू वाह जिन रच रचना हम की है, जिसने रचना रच के सानू बनाया है।
कितनी खूबसूरत रचना है। अते महाराज जी नूं वाहिगुरु नाल प्यार होण करके उसकी हर चीज इतनी प्यारी लगती है कि गुरु महाराज जी इस संसार नूं कहिंदे हन ये अमृत की वाड़ी है, ये अमृत का एक बगीचा है। पर सानू थोड़ा लगता है अमृत का बगीचा, साडे लिए उन्होंने कुछ होर आख्या। हुण साध सिंह जी कीर्तन का अज दे कीर्तन का जो आखिर नुक्ता आप जी की सेवा च मैं रखना चाहना हाँ, वो एक समस्या है, एक इशू है कि महाराज जी का तो प्यार है, महाराज जी उसनू जानते हैं वह कित्थे है, महाराज जी उसकी हर वस्तु के नाल प्यार है, महाराज जी उसके प्यार च इतने भिजे पे हैं कहते हैं आखा जीवा विसरे मर जाओ, कहते हैं तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण है, तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब तू मेरे खान, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना, ए प्यार है, ए प्यार है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई ता भाव के हा काला जी, ए प्यार है। मेरा मन एक ही प्रेम अंग है, मेरा मन अपने उस एक प्यारे नु ही चाहता है और कुछ चाहता ही नहीं है, ये है प्यार। उहा प्रेम प्री केंदन ओ प्री जो प्यारा है महबूब है केंदे बस ओ उसका मेनू प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना प्यार। एक सिनेरियो है कि परमात्मा कहता है कि आप जी प्यार दी जगह कुछ होर ले लो, प्यार ही क्यों मंगते हो, कुछ होर ले लो, होर बहुत कुछ दे सकते हैं, की दे सकते हो, हीरे लाल जोहरात मान मोती बहुत कुछ दे सकते हैं, ये ले लो। महाराज जी आखते हैं हुण सुन वाला शब्द है, कहिंदे अत्यंत चीजा खिलाड़ियां पईयां हन सामने, अकाल पुरख पुछता है तुहानू की चीज चाहिदा है, ते विचकार ही एक थां ते उन्होंने प्यार रखा है, ते महाराज जी आखदे हन उस वल उंगली करके ओ उहा प्रेम प्री, कहिंदे ओ प्री दा प्रेम ही चाहिदा है, कनक माणक गज मोतियन लालन, कनक यानी सोना, माणक कनक माणक स्टोन्स बहुत कीमती कीमती स्टोन्स, कनक माणक गज हाथी, कनक माणक गज लालन डायमंड्स, कनक माणक गज लालन नह नह नहीं, कहते नहीं, तीन बारी आख्या है, कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए सिर्फ प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। कनक माणक गज मोतियन लालन, ना मैनू हीरे ना मैनू पर्ल्स ना मैनू स्टोन्स ना मैनू डायमंड्स, कुछ नहीं चाहिए, की चाहिए है उहा प्रेम प्री, सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए। कनक माणक गज मोतियन लालन नह नह नहीं, राज ना भाग, राज ना भागन ना हुक्म ना साधन, किछ किछ ना चाहिए, कहने इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए, तो यह है प्रेम। सो महाराज जी दे कोल है प्रेम, साडे कोल है कुछ भी नहीं, असी खाली हैं, साडे कोल की है अंदर खाली प्रेम बेन, दैट्स व्हाट वी है। महाराज जी ने बाणी चाखे

संतां संगत मिल रहे, क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम हुंदे हन, प्रेम रूप हुंदे हन। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है, ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है, साधी ध्यान नाल अपनी जिंदगी देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारिया दे नाल ही बनानी है, मैं सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनु सुनो और नोट कर लियो बाद दे विच। कहते हैं संतां संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सहा

any number. A sattva surrounding you. जिसने ए मंग मंग ली है उसदिया सारिया मंगा पूरी और केड़ी मंग नानक को ब्रह्मया कर सच देव क्योंकि सच सदा रहने वाली पूर्ण बिखुटे नानका पूर्ण में हो गया पूरे पदार्थ में भी नहीं रहे तो इस वास्ते हमें पूर्ण बिखुटे नानका ओणक सच और सिद्ध भी है दास पातशाह मैं सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान को दुनिया सबका आधे रस्ते चंगे रस्ते पे सच्चे मार्ग पे चलने वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले मतलब फरमाते सच्चे मार्ग चल देना पुष्ट करे सच जड़ा सच पिया बोलता है वो दुध पिया जड़ा झूठ पिया बोलता है वो जहर पिया सच बोलने जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोलने जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराऊंगी वो नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हमें वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हमें उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा ओदा नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है ओदा नाम भी अंब पर सानू केड़ा अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा नहीं फिर उसकी राखी करनी पैदी संभाल करनी पै फिर सानू जोड़ा अंब फल है वह प्राप्त इसी तरह उस वाहिगुरु की प्राप्ति का साधन ये वाहिगुरु शब्द वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हम ये गुरु का मंत्र बाबा ईसर सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरु मंत्र जो वाहिगुरु है ये दरगाही टिकट दुनियावी सफर करना होने ता भी टिकट की जरूरत टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसे कर उस दरगाह जाने वास्ते मार्ग तक पहुंचने वास्ते प्लीज सानू टिकट चाहिए एक दिन रस्ती रस्ती दुनिया में छड़ के पुत्र धियां त्याग के किसी लंबे पेड़े इंसान ने किसी ने पूछा मारे ऐ धन गुरु अर्जुन देव पातशाह पहला यह दसो भाई जिस रस्ते पे एक दिन इंसान भी तुर रहे हैं मारा पहला दसो कितने वीर उसके पौ कितने प्रयाग सब बॉम्बे जाना मीलों का पता
ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਭ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहाँ को बकता, बिन श्रवना कहाँ को सुनता। बिन नेत्रा कहाँ को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहाँ को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच का

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे ओढ़े वस्त्र का

लागू। काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐनस पागो। सुख दुख दोनों सम कर जाने और माने पुमाना। हर कसोग ते रह अतीता तिन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो ते आगे खोजे।

वाणी के बृहत नाम के जहाज साहेब धनगुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इन्हों बचना का उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेहे कितां दा जोड़ नहीं साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उना जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकना साहब कृपा करदे ने बख्शिश करदे ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहंदे ने

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत साहब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाति बूंद ते पिछे पपी पपी प्या करदा साहब बाणी विच कहिंदे ने

अच्छा उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता, भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू, नाम जपण वालियां नू, सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

साहब फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया पाछा।

आके धन गुरु अर्जुन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गावां बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करन हजूर बाणी विच कहंदे ने

कोई भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आश लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं हो करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चात्रक ने पबीए ने स्वाती बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है। जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पाछा मेरा मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल जुड़े।

कोई रोज रोज नहीं मिल सकता। सेवा मिल गई है तो तरी है, तदे का मार्ग मक्ष गंगाराम रात दिन भांडे मांझी जाने, गुरु के दर्शन की उड़ीक रात दिन उड़ीक कर जाए, कदों भागा वाला दिन चले। धन गुरु अमरदास पातशाह जी के दर्शन गुरु बख्शिश कर, जिस तरह बख्शिश हो रही गंगा राम की सेवा थाए थी करा सामान, क्योंकि कहीं ने इशारा किया समा सुख की घड़ी का पता ही नहीं, आप खुश रही दुख की एक घड़ी आ जाए कई चीज नहीं आ जाए पता ही नहीं लगे किस तरह समा यही है मान गुरु अमरदास पातशाह आप सारे मार्ग ने मेहनत तो आओ जो सेवा मिल जाए गुरु घर की करो, इस उड़ीक आप शामा तक इंतजार करिए। गंगा राम दे सदके सानू भी दीदार का किड़का मिल जाए, तो साडा कीर्तन कीता सुनिया पर गुरु घर किसी की कामना जाया नहीं, जिसने भी तन तन मन धन न जिसने भी सेवा की थी है अदूर फरमाते जा के सिमर सब कुछ पाइए बिरथी उसी भी कारना कर अपनी कारना भी गंगा राम की कारना किस तरह गुरु ने अमृत साढ़े टाइम साढ़ी आशा जी अमृत वेला सच ना बड़े आई जिदा नाम ही अमृत वेला है वो उसद की कल शाम समय अनुसार आओ कल पूर्णमासी क्योंकि पूर्णमासी का नाम लीए तो गुरु नानक पातशाह खां के सामने पूर्णमासी गुरु ने माण बख पूर्णमासी ऐसी पूर्णमासी आई रब प्रगट हो गया खुश रही कई बाबा ने सिंह जी उसे चौबी घंटे का सत्संग है डेली कोई आए चाहे पर पूर्णमासी का समाज खास होता है खास इंडिया हो बाबा जी की बख्शिश द्वारा नानक सर हाजरी भरता की साई की प्रेरणा अनुसारों पूर्णमासी थोड़े को तुसी तां भी जुड़े हुए हो तुहाडे दर्शन करके मैं भी उस पवित्र पावन याद हिरदे च वसावांगा ते सुरत नानक साहिब पहुंचा के दर्शन कर पूर्णमासी आप आओ गंगा राम जी साखी सुन के अपना जीवन सफला करो। आप जिस गुरु ने सानू ते दात बख्शी ओदा शुकराना अदा करिए ते ए अरदास करिए पल्ले अमरदास बंदे तेरी ते तेरी तेरी रहमत है मेरे पातशाह की तासी कलयुगी जी थां थां ते कलयुग रुकावटां ते माया कई रूप धार के पिछड़ी पिछे आए अजे आ गए तो मार्ग दे दारू प्राप्त करके गुरु नु पा गया खुश गुरु नु पा गया जीवन सारी मिल के करी उस तो प्राप्ति कर गुरु नानक पातशाह आप जी ने करम करो सारे गुरु सिख माई पाई अनुगुरु राम दा अमरदास पातशाह जी आप जी का आगमन गुरुपुरब मना
ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਦਰ ਵਜੋਂ ਪੌਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ

सुदिला संचौरासी ए भी कर कर रहा बड़ी आड़ जा फिर फिर जल में अर्शो संग न गया राजलीला राजन की रचना करया हुक्म अपारा सृज सौणी चंदन शोभा नाथ कौर का द्वारा हर तीर्थ साध संगत है सिर कर्म से कर्मा पौराणिक पयो पराप

अर्थ वह करके अर्थात समुद्र की मत कहो। काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बने हो। सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपाण न बिनती काल कृपाण न बिनती ना तो तुमको सब नय कर बेसुमार भे अंत स्वामी तेरो अंत न कूट पराद हमारे खंडो कूट पराद हमारे खंडो अनक विधि समझाओ अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरत रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहे

रखना खाली ना रहे। आओ सारे मालिक दे दर ते हाजिया लगे। बाबा जी वचन कर दे सन जरा गुरु नानक दे दर खाली चला जाएगा और सारा खाली रहेगा। आओ चोरी करो ते सारे हाजिया कीर्तन हो रहे। कीर्तन दे प्यार वाले कीर्तन रिकॉर्ड कर रहे। टेपा लगी कुछ बुद्धि अनुसार जो सेवक बोली जाता है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो छोटी टेप है गुरु नानक पातशाह के दरबार इतनी वही सारी टेप लगी हुई है। जो भी गुरु कुमारी भाई इतने आता है जिस पहुना आता है वो रिकॉर्ड होया जाता है।

के भगत कबीर साहब बयान करते हैं, राम भगत अणियाले तीर, ये प्रेमा भगती के अणियाले तीर ने। इन्हां तीरां दा दर्द या प्रभु जानता है या फिर वो जिहड़े प्रभु नाल प्यार कर

ना कोई हद ना कोई सीमा, प्यार सारिया नू मिलदा भी नहीं, प्रभु दा प्यार सारिया नू लगदा भी नहीं, पर जिन्ना ने प्रभु नाल गुरु नाल प्यार कीता उन्ना दे जीवन दा टांग दुनिया नालों वखरा हुंदा है। ऐसी ही एक प्रेम परी कथा

इस देव सिख माली दे कोल होर भी बहुत सारे माली कम सिखदे ने। ए देव सिख जिथे बाग दा काम करदे दूसरिया नू माली दा काम सिखांदा है, नाल गुरबाणी दा भी प्रेमी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणा दा प्यारा एक देव सिख एक एदी घरवाली एक 11-12 साल दी इन्हां दी लड़की ए तीनों जी गुरबाणी दे नाल जुड़े हुए शुभ गुणा दे नाल जुड़े हुए काम कार कर दे अपना जीवन बता रहे ने। मां बाप धार्मिक ख्यालां दे होन ते बच्चियां ते भी इसका असर होंदा। माता पिता अमृत वेले उठदे ने ते बच्ची भी अमृत वेले उठदी। मां बाप अमृत वेले उठ के बाणी पढ़दे ने, बच्ची भी नाल बाणी पढ़दी। ए परिवार गुरबाणी नाल जुड़िया होया। ए देव सिख कदी कदी फुल्लां दा काम करदा अपनी घरवाली और अपनी बच्ची नूं कहा करदा है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे ने। आनंदपुर साहब जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहिंदे ने उन्हें ऐसा बाग लवाया है, हर तरह का फुल उस बाग विच मिलदा है। जिस तरह इंसान की संभाल करी दीए इस तरह साहब जी फुलां की संभाल करते। पिता दे कोलों ये गल्लां सुन के वो 11-12 सालां दी बच्ची मन विच प्यार आया। एक दिन कहन लगे, पिता जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे, तां मैं भी अपने हत्थां दे नाल फुल उगा के आनंदपुर साहब लै के जावांगे। अपनी बच्ची दी ये भावना देखी ते देव सिख निहाल हो गया, गल विच पल्ला पाया, हाथ जोड़ के कहन लगा, ऐ कलगीधर पिता तू अंतर्यामी है, जानी जान है, अगर मेरी बच्ची दे मन विच ऐसी भावना है तो कृपा करी पातशाह ये भावना एदी हमेशा बनी रहे। फुल्लां दी बहार सी ते ओ सिख नवे फुल लगा रहे है। ए बच्ची भी चकोदरे नाम दा एक फुल इसने फुल बीजे है। जिस दिन फुल बीजे है उस दिन मन दी ऐसी भावना हो गई जद फुल वड्डा होवेगा आनंदपुर साहब लैके जावांगे। ज्यों सवेर दी बैठी शाम तक उस फुल दे सराहणे बैठी रही। रात कर गई, सारी रात उस फुल दा ध्यान, अमृत वेले उठी उस फुल दा ध्यान। दिन बीतते गए, बीज पुंगरिया, चकोदरे दा फुल हौली हौली खिलण लग पे है। ए बच्ची दिन रात सौंदिया बहिंदिया खांदिया पींदिया उस फुल विच ध्यान, कदू फुल वड्डा होवेगा, कदू आनंदपुर साहब लैके जावांगे। ए एक प्यार है, इस बच्ची नूं नहीं पता प्यार की हुंदा है, पर एक खिच है
एक तड़प है मन विच और उमर उमर देखिए तो उमर कुछ भी नहीं पर जे प्यार देखिए ते कैसा प्यार उठदियां बहंदियां फुल विच ध्यान निरा फुल च ध्यान नहीं गुरु पिता दे चरणा विच भी ध्यान कदू फुल वड्डा होवेगा ते लैके आनंदपुर साहब जावांगे।

प्रभु दे प्यार दी, परमेश्वर दे प्यार दी आपां विचार कर रहे सां। होशियारपुर दे विच रहण वाला देव सिख जी दी बच्ची 11-12 साल दी, जिन्हों पता लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुलां नाल बड़ा प्यार करदे ने, ता प्यार मन विच ऐसा उपजिया, ऐसा प्यार मन विच आया, आप फुल बीजिया, चकोदरी दा फुल पत्तियां निकल आईया। ता इस बच्ची ने कपड़े दी एक गुत्थी बना के फुल दे उत्ते पा दीती, कोई पंछी इस फुल नू खराब ना करे, क्योंकि ए फुल आनंदपुर साहब लेके जाने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणा नू मत्था टेक के ए फुल भेट करने। इस बच्ची दे मन दी ये भावना, फुल जद पूरी तरह खिल गया, आनंदपुर साहब जाण नूं भी 2-3 दिन बाकी रह गए ने, अज ये बच्ची अपने पिता दे नालों अपनी माता दे नालों पहला ही बाग विच आ पहुंची। बाग विच आके रोज दी तरह बाग दे जिस खिते विच ए चकोदरे दा फुल लगा, ए बच्ची उत्थे आ पहुंची, फुल दे उत्तों गुत्थी उतारी, फुल वाल देखिया, सोहना फुल खिड़दे है, उधर हाले सूरज चढ़िया सी, सूरज दियां किरणा सुनहरे रंग दियां इस फुल ते पईयां, और ए फुल सोने दी तरह चमक उठिया। एक सवेर दा वेला, एक सूरज दियां पहलियां सुनहरी किरणा फुल ते पईयां, जिथे फुल खिड़िया सोने दी तरह चमक उठिया, उसे तरह ए जिहड़ी बच्ची है फुल देख के एदा मन भी खिड़ गया। उम्र बेशक छोटी पर पिता दे कोलों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे गुण सुन के कथा कहानियां सुन के मन विच बड़ा प्यार सी। इस बच्ची ने फुल वल देखिया, मन गुरु दे चरणा विच जा पहुंचिया, हाथ जोड़ के अखां बंद करके फुल दे कोल बैठी और बेनती करती है, ऐ कलगीधर पिता कृपा करनी, ए जड़ा फुल

जिस तरह भी आया उस बच्ची दी बेनती अपनी कलम द्वारा दास ने इस तरह लिखण दा यतन कीता। इस नूं कविता समझो या उस बच्ची दे मन दा वैराग वलवला समझो। मानो ओ बच्ची हाथ जोड़ के अरदास पई कर दी है, मैनू तेरे नाल इन्ना है प्यार मेरे सतगुरा, नीले वाले आ बाजा वाले आ फौजा वाले आ।

बोलना तोड़ी इस बच्ची दी आवाज विच इन्ना दर्द सी तरला सी कांबे दा धीरदा कंब गया उदा हद पिछ आया पर जसवंत राय वो गुस्से विच कहन लगा कामिया कोई फुल क्यों नहीं तोड़दा तैनू क्या फुल तोड़ कामे ने फिर हथ वधाया फुल तोड़न वास्ते हुण उस बच्ची ने बाल्टी उथी सुट दिती ज्यों उथों भजी कहिंदे आ रही है हाए ना तोड़ वीरवे ते कामा ओदा हथ

या उस लड़की का तेनू क्या फुल तोड़ मालक दा हुक्म कामे ने ते मनना है उस कामे ने फुल नू फिर हथ पाया बच्ची भी कोल पहुंच गई इधर कामे ने फुल तोड़िया उधर उस बच्ची ने आखरी वरी क्या हाय ना तोड़ कहंदी हुई धरती ते डिगी ते बेहोश हो गई। ए नजारा देख के जसवंत राय हैरान हो गया उस अपने महल नू मुड़ पिया पिछे पिछे और नौकर हाथ विच फुल फड़े है ओ भी तुरदा जा रहे है पर उस नू इस तरह जापदा है जिवें फुल विचों इको ही आवाज आ रही है हाय ना तो हाय ना तो। जसवंत राय महल विच जाके बैठा कामे ने ओ फुल सामने रखिया हाय ना तोड़ हाय ना तोड़ कहंदा होया नौकरी छड़ के ही उत्थों चला गया कहंदा जा रहा मैं अपराध कीता फुल नहीं तोड़िया एक बच्ची दी मैं जिंद तोड़ी नौकरी छड़ के भज गया। जसवंत राय हैरान हो गया पर उस दे कन्ना विच भी इको ही आवाज गूंज रही है हाय ना तो हाय ना तो। उधर जसवंत राय महल विच बैठा परेशान है ता दूसरे पासे देव सिख पता लगा बच्ची बेसुरत है बाग विच ताज देव सिख अपनी बच्ची नू मंजी ते पा के घर लै गए। सिद्धकवान सिख ने बाणी नाल जुड़े हुए बच्ची नू मंजी ते पाए है देव सिख एदे घर वाल कोल बैठे बाणी पै पढ़दे ने। रात पै गई सारा दिन बीत गया पर बच्ची नू होश कोई नहीं। जसवंत राय धन पदार्थ बहुत है गुरु तू बेमुख है अमृत नहीं छकया ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू ठीक भी नहीं समझता इन्हां ने हथियार चुके ने लड़ाइयां लड़दे ने इस करके मैनू गुरु ते भरोसा नहीं ते बेमुख होए है पर अज इस नू चैन नहीं आ रहा। रात पई जसवंत राय जद सुता एक सुपना देखिया हे हिंदुस्तान हिंदुस्तान दे जिन्ने भी लोग ने किसे भी जात दे किसे भी मजहब दे इस सारे लोग एक फुल्लां दी तरह ने कोई किसे रंग दा फुल कोई किसे रंग दा फुल फुल आसरे ने मैं करे ने खिड़खड़ा रहे ने। जसवंत राय सुपना देख रहे है हर फुल दे सराणे एक तुर्क पठान खड़ा है हर एक फुल दे सराणे एक एक तुर्क पठान खड़ा है। अचानक एक ऐसी हनेरी चली उन्हां तुर्का पठाना ने अपने पैरां थले इन्हां फुल्लां नूं लताड़ना शुरू कर दिता और हरेक फुल विचों इक्को ही आवाज आ रही है हाय ना तोड़ हाय ना तोड़। फुल लहूलुहान हो रहे ने ए तुर्क पठान फुल्लां नूं मसल दे जा रहे ने। अचानक पूरे वल्लों एक लिशकारा वजा एक गर्जवी आवाज आई खबरदार ठहर जाओ हुण कोई फुल्लां नूं हाथ ना पाणा। ए लिशक ने जो खबरदारी की थी वो फुल्लां नूं लताड़न वाले ठठंबर गए कुछ मारे गए कुछ भज गए कुछ आप फुल्लां दी तरह निमाणे हो गए संभल गए सुधर गए। फिर आवाज आई रख लिया रख लिया। ए नजारा देख के
जसवंत राय दी अख खुल गई। सारा शरीर परसीने नाल भरे है। घरवाली नूं उठाया, जसवंत राय कहन लगा, भलीए लोके मैं बड़ा बेचैन हां। इस तरह जापदा है जिवें महल दी एक एक इट विचों आवाज आ रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। मेरे कन्ना विच एहो ही आवाज गूंज रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। पुरजा दी सुपना घरवाली नूं दस्सिया, ते घरवाली ने कहा, स्वामी जी जो आपां देखदे हां, जो सोचदे हां, ओह कई वारी सानू सुपने विच नजर आंदा। तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इस करके ठीक नहीं समझदे कि इन्हां हथियार चुके ने, ये लड़ाइयां लड़दे ने। पर स्वामी जी साधु संत हिंदुस्तान विच होर भी बड़े ने, वो भी पुन्ना नूं जानदे ने, पर उन्हां हथियार नहीं चुके क्योंकि हथियार चुकण दी जाच नहीं। ये जिहड़ा सुपना देखिया है, ये हिंदुस्तान दे लोग कई मजहबां दे, कईआं जातां दे, ये दुखी ने क्योंकि तुरक मुगल जुलम पै करदे ने, हिंदुस्तानियां नूं परेशान करदे ने। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हाथ विच कृपाण फड़ी हिंदू धर्म दी रखिया वास्ते, हिंदुस्तानियां दी रखिया वास्ते, मजलूमां दी रखिया वास्ते। जिहड़े इन्हां फुल्लां नूं हिंदुस्तानियां नूं दुख दे रहे सन, उन्हां दी ढाल गुरु गोबिंद सिंह जी बने ने। पति जी सानू चाहिदा सी असी भी गुरु दी फौज विच हाजर होंदे, सेवा करदे, पर असी ते गुरु तो बेमुख हो गए हैं। ए गल्लां सुन के जसवंत राय कहन लगा, हां तू सच कहनी, गुरु लड़दा पिया है।